आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ
1: ਚਾਹਿਆ।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जन हरफ न पढ़ो हेकड़ो ओ अधार बुस्तान व्या अधार बुस्तान व्या सजल डिठो हित अधल पंद अजाया न डिठाऊं हित न होत वो जानन चन चवे मत यर मोग।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: ईरान वॾे हमले खां डिॼी ॻाल्हियुनि लाइ मिंथू कयूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ईरान ते वॾे फ़ौजी हमले जी तयारी करे चुको हो। दॿाउ सबबि ईरान ॿीहर ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते अचण लाइ तयार थी वियो आहे। मां बि फ़ौजी कार्रवाई बदिरां सिफ़ारती हल खे तरजीह ॾींदो आहियां। मुआहिदे करणु पसंदि न कंदसि छाकाणि त माण्हुनि खे मारणु नथो चाहियां। ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। ईरान में हिकु धुर ॻाल्हियुनि ऐं ॿी जंग जारी रखण जी हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जी दावा जी डी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिका आवाम जे हक़ में ई थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अॼु ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब रवानो थींदो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म सऊदी वहद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कंदो। मुलाक़ात में पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। मौजूदा निज़ाम केॾांहुं बि न पियो वञे। हुकूमत पंहिंजो आइनी मुदो पूरो कंदी ऐं शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहंदो। अॼु बि हिन ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियां त निज़ाम बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे। माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त वज़ीर आज़म ऐं मुंहिंजा लाॻापा ख़राब थी वञनि। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जो इस्लामाबाद में साफ़िनि सां ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त वज़ीर आज़म 14 खां 16 कलाक कमु करे रहियो आहे। शहबाज शरीफ खे सिस्टम ठीकु मिले हा त मुल्क खे 100 भेरा तेज़ीअ सां अॻिते वठी वञे हा। वज़ीर आज़म खे मशवरो ॾिनो वेंदो त सभिनी वज़ीरनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वरितो वञे। वज़ीरनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो कार्टरी धुर वठे ऐं पोइ रिपोर्ट अवाम अॻियां रखी वञे। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फोरम विच में मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद ऐं हिकु फोरम मारिजी वियो। पुलिस मौजूदु पुलिस ऐं फोरम विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हुसन खोसो शहीद थी वियो। ॾोहारी गुलाब शाह बि मारिजी वियो। दादू वेझो शाणी बिरादरी में जहिड़े दौरान क़तल थियल 3 ॼणनि जे हथियारनि जे पहिरें में तदफ़ीन। मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं खादिम शाणीअ जी तदफ़ीन कई वई। जहिड़ींदड़ धुरियुनि जा ॻोठ वेझो वण सबबि ॿीहर जहिड़े जो इम्कान। वाके बाद मुख जवाबदार सदाम शाणी ऐं ॿिया घर खाली करे फरार थी विया। पुलिस जवाबदारनि जा घर ढाहिण जो कमु शुरू करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जो मलीर मां अॻवा थियल 4 वरनि जी ॿालीअ खे 12 अगस्त ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुसु सरदार अली खां ख़ुला वरिती हुई। अॻोणे मुड़ुसु ऐं संदसि माइट धीअ सूदो अॻवा कयो हो। पुलिस मूंखे बाज़ियाब करायो पर न्याणी अञा ताईं न मिली आहे। अदालत SSP मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि ॿालीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो। अमेरिकी सदर जो डेमोक्रेटिक अॻवान अब्दुल सईद ते यहूदीन ऐं इसराइल सां नफ़रत जो इल्ज़ाम। परॾेही मीडिया मूजिबि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त सेनेट जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी फतेह अब्दुल सईद नफ़रत सां भरियल आहे। हू यहूदीन ऐं इसराइल सां नफ़रत कंदो आहे। मीडिया रिपोर्ट्स अमेरिका में इसराइल नवाज़ तंजीम डॉक्टर डेमोक्रेटिक प्राइमरी खे हाराइण लाइ $32 मिलियन ख़र्च कया हुआ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अहद सऊदी अरब वेंदो, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अहद सां मुलाकात कंदो। बिन तरफ़न लागापन समेत खिते में जारी छिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे त वज़ीर आज़म सां गॾु नायब वज़ीर आज़म मुलाकातनि दौरान पाक सऊदी लागापन ऐं खिते जी सूरतयाल समेत सफ़ारती कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। ईरान ऐं ओमान आबन हरमुज़ में बरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ईरानी परॾेही वज़ारत तसदीक करे छॾी। तरमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहदे जो गॾियल बदरनामो तयार करे रहिया आहिनि। ट्रेन जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघियो। ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई थी आहे। अमेरिकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर ते नाराज़। अमेरिकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान हथियारनि जे ज़खीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो। सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद करे छॾी आहे। चयो आहे त अमेरिका वटि हथियारनि जो वॾो ज़खीरो मौजूदु आहे। पखिड़ींदड़नि खे जेल वञणो पइजी सघे थो। दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो। जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो। नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे। ईरान में हिकु दुर ॻाल्हियुनि ऐं ॿी जंग जारी रखण जो हामी आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं छिकताण वारे अमल में सूरतयाल हेठि मथे थींदी रहंदी आहे। जेको बि थींदो अमेरिकी अवाम जे हक़ में ई थींदो। ओमान वेझो आबन हरमुज़ में ॿिनि आयल टैंकर्स में धमाका। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी मूजिबि बहिरी ॿेड़नि में धमाका ओमान वेझो थिया आहिनि। वधीक तफ़सील न आहिनि मिलिया। काज़ी अहमद में पुलिस ऐं फौरन विच मुक़ाबिलो। पुलिस अहलकार शहीद, हिकु फौरू बि मारिजी वियो। पुलिस मौजूदु पुलिस ऐं फौरन विच में मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार पीर मोहम्मद हसन खोसो शहीद थी वियो हो। ॾोहारी गुलाब शाह बि मारिजी वियो। ॾोहारी मुख़्तलिफ़ केसनि में घुरबल हो। वधीक जांच जारी आहे। सिंध हाई कोर्ट जो मलीर मां अगवा थियल 4 वरी जे ॿारड़ीअ खे 12 अगस्त ते बाज़ियाब कराइण जो हुकुम शाहीन बीबी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त 4 साल अॻु मुड़ुस सरदार अली खां खुला वरिती हुई। अॻोणे मुड़ुस ऐं संदसि माइटनि धीअ सूदो अगवा कयो हो। अदालत एसपी मलीर खे 6 ॾींहनि अंदरि ॿारड़ीअ खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो।

0: दादू वेझो शाहानी बिरादरी में जहिड़े दौरान क़त्ल थियल टिन ॼणनि जे हथियारनि जे पहिरें में तदसीन मुज़फ़र रब नवाज़ ऐं खादिम शाहानीअ जे जनाज़े निमाज़ बाद तदसीन कई वई। जहिड़ींदड़ धुरियुनि जा ॻोठ वेझो हुअण सबबि ॿीहर जहिड़े जो इम्कान वाक़े बाद मुख्य जवाबदार सदाम शाहानी ऐं ॿिया घर खाली करे फ़रार थी विया। सेराणी वेझो बासर पारां चोरी इल्ज़ाम हेठि पकड़ियल ॿिनि ॼणनि ते बदतरीन तशदुद ऐं तज़लील वीडियो वायरल थी वई। सोशल मीडिया ते ॻोठ भा मेमण में ट्रांसफार्मर चोरी जे इल्ज़ाम हेठि वली मोहम्मद मला मौला बख़्श ऐं अली मोहम्मद ते तशदुद करे तज़लील कई वई। वीडियो वायरल थियण बाद सियासी समाजी धुरियुनि पारां वाक़े जी मज़म्मत इख़्तियार खां नोटिस वठण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आ है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वाली आ है छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
3: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
2: इस्तेमाल किए कजे?
3: मुतासिर थे हंदते डीह में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खा आराम हर रोज हर कदम। अली वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेहरान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 12:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: Pakistan ki shaan, Wadiye Mehran, Mehran ki pehchan, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.

अच्छा, आज चीन में खास तौर पर ज़राअत में नई टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल पे हम बात कर रहे हैं, और इन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल के हवाले से जो कामयाबियां हासिल हुई हैं उन पर भी बात करेंगे, फिर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर भी बात करेंगे, और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या कुछ है सीखने को। हम सब जानते हैं कि जो ज़राअत है वो किसी भी मुल्क की मईशत, उसके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, यानी आप क्या प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं और आप उस मुल्क के रहने वाले जो है वो उनको ग़िज़ा के मामले में सफिशेंसी है या नहीं है, और फिर देही तरक्की जो है, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो ज़राअत होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले ममालिक में शामिल चीन ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में ज़राअत के शोबे में ऐसी गैर मामूली तब्दीलियाँ की हैं जिन्हें न सिर्फ इसकी खुराक की ज़रूरियात उनसे पूरी हुई हैं, बल्कि इसे जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बड़ा नुमाया मकाम मिला है। एक वक्त था जब चीन की जो ज़राअत है वो ज़्यादातर रिवायती तरीक़ों पर इंहिसार करती थी, जैसे पाकिस्तान में आज के लिए, लेकिन आज मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, सैटेलाइट भी है, बिग डेटा है, फिर स्मार्ट इरीगेशन है, और फिर जदीद बीज हैं और ज़रई मशीन भी। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो चीनी खेत हैं उसकी शक्ल बदल रहे हैं। चीन की कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने में नहीं है बल्कि उसे आम किसान तक पहुंचाने में भी है। यही वजह है कि आज चीन दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां ज़रई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी को बराह रास्त पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राअत चीन में उसकी जदीदकारी जो है वो सबसे नुमाया पहलू उसका स्मार्ट एग्रीकल्चरल है। इस निज़ाम में खेतों में नस्ब जो सेंसर्स हैं वो मिट्टी की नमी, दर्जा हरारत और ग़िज़ाई अज्जा की मुसलसल निगरानी करते हैं, और इन मालूमात का तज़िया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर किसान को बताया जाता है कि कब पानी देना है, कितनी खाद इस्तेमाल करनी है, और बीमारियों या कीड़ों से बचाव के लिए क्या इकदाम जरूरी है। तो इस तरीक़ेकार से न सिर्फ पानी और खाद की बचत होती है बल्कि फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। और याद रखें, ये हम मिट्टी में मौजूद सेंसर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी जानब जो ज़रई ड्रोन्स हैं, जो कि अब दुनिया भर में चीन के ज़रई ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ड्रोन्स चंद मिनट्स में बड़े रकबे पर अद्वियात और खाद का छिड़काव भी कर देते हैं, जबकि यही काम अगर हम रिवायती तरीके से करें तो वो कई घंटों में मुकम्मल होता है। इससे मजदूरी की लागत भी कम हुई है। जाहिर है कि जो मजदूर आप चुनते हैं, जिनको पैसे देते हैं कि आप ये काम करें, उसका वक्त, उसकी लागत कम हुई है। फिर ज़रई अद्वियात का इस्तेमाल भी बहुत दुरुस्त अंदाज में होने लगा है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटेड होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर पहाड़ी इलाकों, चावल के खेतों और दुश्वार गुजार मकाम पर ये ड्रोन खास तौर पर मुफीद साबित होते हैं, जहाँ इंसान को इन फसलों को अद्वियात के छिड़काव और दीगर चीज़ों में मुश्किलात होती थी। तो ज़रई मशीनरी में भी अगर हम बात करें, बड़ी नुमाया तरक्की हुई है। जदीद ट्रैक्टर जो है वो आ गए हैं, खुदकार बीज बोने वाली मशीनें आ गई हैं, कंबाइन हार्वेस्टर आ गए हैं, रोबोटिक मशीन अब तो आ गई हैं खेतों में आहिस्ता आहिस्ता, और खुदकार आबपाशी के निज़ाम ने किसानों की मेहनत में बहुत नुमाया कमी की है। इस वक्त चीन में जो फसलों की काश्त, बुआई और कटाई की जो मजमूई मैकेनाइजेशन की शरह है वो तकरीबन 90% बताई जाती है, जो जदीद ज़रई जो माहौल है उसमें एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। यानी आप यूं समझें कि ओवरऑल पूरे चीन में जो ज़राअत

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: GFM 88 की आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदले तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दो के समान गए चाहतों की बात फलाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नहीं से जाकर जमीन से आसमान जिंदगी से मोर चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ई स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुना प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड ई स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो,

खूबसूरती तो हमें मिल जाए, लेकिन वो खूबसूरती जो मिले तो वो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दी में हमें गोरा बना दे, बाद में बहुत सारी साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर छोड़ दे। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो वो कैसे मुमकिन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी को कमेंट खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब, ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे। और यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग मौजूद है, उन तमाम लोगों से जनाब उनकी हाल चाल भी पूछे जाएंगे। सो डियर लिसनर्स, अंदर की फहालत उनके से ही आपकी हालत है। उम्मीद है शदीद उनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मोड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। यानी तो यहाँ पर ना ऐसा होगा कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले, और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आने का काम करती भैया सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब आप लोगों से होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

आपकी जनाब क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा हसीन से यहाँ पर कसीदा आप एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आके सिद्रा के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास लाएंगे और जनाब आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में आगे। यहाँ पर आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है तो वो भी जरा बता दे दें ताकि आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप लोग टॉपिक को भी फॉलो करते रहे। तो आज के प्रोग्राम का सवाल जो है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि भाई ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के बहुत सारे निकनेम्स होते हैं, यानी उनको प्यार से बुलाया जाता है। हर किसी का या तो फिर एक निकनेम होता है या तो फिर किसी का एक ऐसा निकनेम होता है जिसे सुनकर भाई आपको लगता है कि इतना फनी निकनेम आखिर क्या सोच कर ही आपने मेरे पे रखा था। आज आप बिल्कुल मुझे ये बताने वाले हैं सबसे फनी निकनेम जो किसी ने आपको दिया हो वो जरा मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा निकनेम जो कि आप लोगों को दिया गया हो और वो आप सुनकर और सोच के कहते हैं कि ये भाई नाम मेरे ऊपर आपके क्या सोच कर रखा गया होगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो GAFM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए ताकि हमें भी पता चले कि ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है तो ये कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और कौन कौन हमारे साथ है। ओके जी, तो मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक ये रखा है कि आप मुझे बताएं सबसे फनी निकनेम जो आपको किसी ने दिया हो वो आप सोच कर ये समझते हैं या फिर ये सोचते हैं कि भाई ये आखिर निकनेम हमें क्यों ही दिया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे निकनेम्स हमारे ऊपर रखे जाते हैं जो शायद हमारी पर्सनैलिटी को देकर रखे जाते हैं या तो आप वो नाम जो है आपके ऊपर सूट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आज आप अपना निकनेम बताएंगे जो कि आपको लगता है कि ये बहुत फनी है और लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं। ओके जी, इसके अलावा यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइएगा। उससे ये फायदा होगा कि आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं और वहां से नाम लेकर तलब करते हैं। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए और नंबर है जनाब 0332738439 0332738439 और दूसरा नंबर है 03125025907 03125025907। ये नंबर आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए डायल कर सकते हैं। नंबर के ऊपर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि भाई आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। चलिए जी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पर अली रजा हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई जान को। आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि लोग रोजाना इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं मगर हम फिर भी खुद को हमेशा जिंदा रहने वाला समझ बैठे हैं। हर जनाजा जिंदा लोगों के लिए एक खामोश नसीहत है कि अगली बारी किसकी भी हो सकती है, इसलिए अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, दिलों को साफ रखें और नेकी का रास्ता अख्तियार करें क्योंकि मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और जाम तालिब सोलंगी हमें सुन रहे हैं मोरो से, आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अदी तवां जो प्रोग्राम बुधू पया तवां शमन जो गानो बुधाईंदा तो मेहरबानी थींदी। बिल्कुल तवांखे शमन जो गानो बुधाईंदा ऐं चौथा कलाम ॿुधाईंदा अदी जी जी। बिल्कुल तव्हांजो कलाम हलायूं था। सादिया हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम की दी, गुड आफ्टरनून, आई एम सादिया अली फ्रॉम कराची। ओके सादिया, आपको वेलकम कहते हैं। माजिद हुसैन अब्बासी हमारे साथ कहते हैं वेलकम, वेलकम टू यू। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद हुसैन अब्बासी फ्रॉम अरावती। आपके प्रोग्राम का बहुत इंतजार होता है पर क्या करें, गांव में नेटवर्क सही नहीं आता। अये हाय, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, सादिया लिखती है कि मैंने पोइट्री लिखती है, मत खोल मेरी किस्मत की किताबों को, हर शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था।
ओके आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं गाना ओके आपका गाना लगाने की कोशिश करेंगे. शहजाद कादरी हमें सुन रहे हैं शहजाद कादरी आपको वेलकम कहा जाता है. आबिद बरोही हमारे साथ है नौशरो फिरोज से आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया. अब्दुल कैसर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है. वासु भाई कहते अदी सिडो कैसी हो ठीक ठाक हो बिल्कुल मजे में ताम बुधायो कहते असा भी तवाजे प्यारे प्रोग्राम में हाजिर थी वयाजी. वासु भाई थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ. और मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई स्वीट सुंदर बुआ जी आपको भी वेलकम कहा जाता है. अच्छा ऐसे नारबाणी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मैडम मुस्कान ऐसी आप माँ सफा मजे में ताम बुधा की ठीक ठाक मजे. और निदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम मौलाना सलाम अदर वेलकम टू शो टॉपिक टूना टूना नेम तो भाई क्या बात है टूना फिश की बात हो रही है यहाँ पर.

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: GAFM 88
0: सिंध की आवाज।
3: यार कुछ दिन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सोना तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर आए सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
3: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए?
4: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आए चेल जी तकलीफ है, सट धक लगन, पुराने जख्म जे सूर चमड़ी के जलन लाए भी फायदेमंद है।
3: इस्तेमाल किए कजे?
4: मुतासिर थे हंध ते डी में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी। FM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88.9। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन हीरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में फन करते हैं, प्रोग्राम में अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं और आप लोगों के साथ बातें करते हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है जो कि भाई जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा जाए तो भाई आप लोग अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करके देखा होता है, आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं लेकिन आप लोगों को रिजल्ट्स जो है वो अपने एन मुताबिक नहीं मिल रहे होते हैं। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, हम क्या करें, तो आप ऐसा कीजिए, आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। ओके जी, तो आप लोगों को बताया जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में जरा तफसील के साथ। अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो आज आप लोगों को बताया जाएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में हम जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बातें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर कैसे काम करने वाले हैं, कैसे आपको खूबसूरत बनाने वाले हैं, तो बताती हूँ ना, रुको जरा, सब्र तो करो। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज किया जा रहा है और इसको यूज करने की सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूलों को जो है ना वो ज्यादातर वैल्यू इसलिए दी जाती है क्योंकि वो आपके हर स्किन के ऊपर सूट कर जाते हैं। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर भी तैयार की गई है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ए बीड्स है, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज की जाती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको देगी जी परफेक्ट वाला हुस्न। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें तो क्या आपके चेहरे पर भी सूट करेगी, तो बिल्कुल जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसे आप बिल्कुल लगा सकते हैं बेफिक्र होकर, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के मुताबिक ही तैयार की गई है, एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, आपकी जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद देती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल जल्द की बेरोनगी कम करता है और चेहरे को ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाने में भी मदद देता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल खसूसी अज्जा जो कि आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देंगे और खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। तो रोजाना इस्तेमाल से आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरत चमक जो है ना वो मिलती रहेगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें, ये तो भाई फायदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का था। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए हाजिर खिदमत है जनाब डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश की बात आप लोगों को बताते चलो तो डी स्किन फेस वॉश इतना मजे का, इतना कमाल का प्रोडक्ट है। ये जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम

लीजिए, मिल रहे हैं तो बढ़िया, नहीं मिल रहे तो इन नंबर जो ना वो रब्ता करते रहिए। जैसे बहुत से लोग आकर ये कहते हैं कि बाजी के साझे एरिया में तो अन्य ताई कौन मिले तो पापा ही नंबर से कि तमाके बुधाया वन था ना इन नंबर से तमा जल्दी जल्दी राबतो करे पांच ही करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराई सको था। ओके जी, सो अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती में इजाफा लाइए, जरा अपने आप को महसूस कराइए कि आप अपनी केयर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 और फेसबुक पर, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, हाँ जी, सबसे जो फनी निकनेम आपको दिया गया हो, ऐसा आपको महसूस होता है कि ये जो मेरा नाम है ना ये बड़ा फनी है और ये आपको किसी ने दिया है, वो नाम आप मुझे बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए।

सारी क्रीम इस्तेमाल करने वालों, बताओ जी रिजल्ट कैसा मिला? और ये हमारे साथ है सोने मानो के सलाम रियाज महर जो रियाज महर भात आज मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया मकसूद मल्हा हमारे साथ है मीरापुर से कहते सिद्रा मुस्कान आदाब आदाब मुझे माशा मजूर का गाना तो सुनाना तुझे हुकूमत हाजिर थींदा हूँ हर वक्त ओके मां कोशिश कदम सबनी जा गाना हलाईंदा सी ठीक है और चाचा खाली तवा भी छादा जो अच्छा कहते हैं बेटा सिडो मैं जब तक जिंदा हूँ आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा आप कुछ भी कहो चले मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहें बहुत शुक्रिया जी और कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट बिल्कुल आपका गाना चलाएंगे मकसूद कहते हैं सिद्रा जवाब मुझे घर घर वाले मासा मासा मासा क्यों बोलते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों बोलते हैं मासा मासा अच्छा मकसूद को मासा बना दिया सही है भाई कुछ और नहीं बनाया अच्छा कहते हैं सिद्रा मुस्कान देखो आपका शो कितना अच्छा है कभी कभी गाने की फरमाइश करता हूँ पर पार तो हो जाए अच्छा अच्छा मैं कोशिश कदम तांचे गाने जी उनके हलाए वठना सी ठीक है और कहते हैं कल मेरी चले भाभी को बोलिएगा ट्राई करती रही आपकी कॉल भी कभी ना कभी मिल ही जाएगी बिल्कुल से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए कंजूसियां यहाँ भी मुड़ो ना था नहीं माना

नाम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों की खूबसूरती को एहसास हो कि आप वाकई कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अमीरों वाला एहसास होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करें तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम

है सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद है इकबाल लाशारी भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। नदली कहती कि मुझ पर काफी निकनेम है भाई वालों के, अम्मी के, दोस्तों के, कौन से बताऊं जो सबसे फनी लगता हो आपको कि भाई ये सबसे फनी निकनेम है मेरा, वो बताएं। और उनके अलावा किशोर भाई कहते सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे जाय बुधा कसम दे। अच्छा उम्मीद दिल कहते हैं जिद्दी और जिद्दी कैसी हैं आप, ठीक ठाक है ना, ऐसे ही खुश रहें, हंसी मुस्कुराती रहें। आपका शो खजूरों के पेड़ पर मजदूरों के साथ सुन रहे हैं और कालू आपको सलाम दे रहा है। कालू भाई को बोलें ड्रेस स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए ताकि कालू से गोरू हो जाए।

आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश, क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे ना, खूबसूरती भी वो वाली जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगी। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमारे साथ रुखसार कहती हैं कि नहीं नहीं रुखसार तो स्कूल से आने वाली है, शो सुन रही हो, बहुत ही अच्छा, अल्लाह पाक आपको हंसा मुस्कुराता रखे। मीरपुर खास से गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से। अच्छा भाई, ये थोड़ा कंफ्यूज करते थे आप मुझे कभी कभी। चलें, थैंक यू। अच्छा किशोर कहते हैं, तुझे अखिन में ना निंड आया, मुखे फील थे पयो, तहां के सही फील थे पयो, निंड ना बस अलाए छु ये थोड़ो थोड़ो ही यार, स्लो स्लो तड़े मार सोचा पई त गाना कुछ फास्ट लायो जे तहां के महसूस न थिए, पर तहां डाडा माशाल्लाह। यो वेरी चलक ब्रो।

अच्छा चाचा खालिद कहते आपका निकनेम अच्छा है सिडो, ये टॉपिक है सर। मेरा कोई नहीं निकनेम, आई एम खालिद जुनेन जो। कभी बचपन में किसी ने रखा होगा, कोई पैर से बुलाता होगा या फिर नहीं। अच्छा सादिया कहती है मेरा निकनेम पिंकी था। ओके पिंकी। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक कमांडो कहके फ्रेंड्स बुलाते हैं जब मुझे तो, पर मुझे तो कमांडो की वर्दी से भी डर लगता है। यही होता है हो तंज में कोठी ना होंदा। अच्छा निदली कहती है मेरा एक भाई मुझे ओगी बोलता है और दूसरा भाई डी बोलता है और फ्रेंड्स में कोई निदू कोई निदी बोलता है और मेरा फेवरेट निकनेम है निदली। तुम्हारा हर दिया हुआ नाम अच्छा लगता है मेरे को। अल्लाह मैं सदको बन जाए सदको। पोस्ट को लाइक और शेयर किया ही नहीं, कीजिए जरा।

अरे भाई मत करे, आप जानते हैं मुझे सब कुछ पता होता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये बात है कि मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का माहौल जो ना वो जरा ठीक ठाक रहना चाहिए। मैं कोई प्रोग्राम में मेस नहीं चाहती। ओके जी, उनका अलावा ये हमारे साथ है नसरुल्ला सूरों के प्रोग्राम जो चंगो मुड़ सुवी अच्छी हुए माशाल्लाह नजर न लगे।

बातें बहुत ही खूबसूरत सा गाना फरीहा परवेज की आवाज में हमने इंजॉय किया। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती कहां तक पहुंची मुझे अंदाजा हो जाए। ऐसे के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए तमाम प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस जो नंबर आप लोगों को बताए जा रहे हैं उनके ऊपर राता कीजिए ताकि आप भी ये समझ सके कि हमारे करीबी जनरल स्टोर पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो या फिर व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो, तमाम अवेलेबल हो जाए।

वासा भाई कहती अदी सिडोर जवाब कदें कदें मुखे टी वासा एतरा दफा मजाकन में चवंदा आए टी वासा ये क्यों कहते अच्छा किशोर भाई कहते टॉपिक बाबा सही शहजादा कहते हैं मेरे भांजे स्मार्ट चाचू कहते हैं बाकी बचपन से दोस्त और काफी रिश्तेदार केके कहते हैं ओके मिस्टर केके लेकिन सबसे फनी नाम बताना था शहजादा जलपानी भी हमारा शो सुन रहे हैं भाई को वेलकम

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हांची चाचा खालिद कहते हैं सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं, अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर जो डिहाइड्रेशन जमा हो जाती है ना, वो खत्म हो जाएगा, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए सोली सिंधी में। और मीर तारिक बलोच हमें सुन रहे थे, असम में शामिल आई हूँ प्रोग्राम में, मोहब्बतू भाजू वेलकम। अच्छा अदो अदो चाथो चवे अदी, तो अजकल मुखे हल्के में वेठी पयो लगे थो, मुखे भी निदड़ी वांगुर मुंह खराब करो पवंदो, निदड़ी मूसा कदे भी मुंह खराब ना है कयो। यस वो सबनी सा कंदी पर मूसा न कंदी। बाकी हल्के में कौन वरतो आए, तमा सबनी खां भारी आयो। यस आईली फनी कोने को सच्ची बताए, सोचे बैठो अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं सांच जो तो माइटर निकनेम रखियो ही कोने, एक प्यारे मानो मिस्टर खड़ूस रखियो हो। अच्छा पर तो वहां खड़ूस तो ना हो, साजिद हुसैन सुमरो भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अदी। ओके आप हमें मिठो देरों से सुन रहे हैं, खुश आमदी दिन वेलकम कहा जाता है आपको। ऐसे ही प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, शामिल प्रोग्राम होते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते जाइए और बताइए आप हमें कहां से सुन रहे हैं। उसके अलावा टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: It's 2 PM. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: मीरपुर डिवीजन में चार सीटों पीपुल्स पार्टी का धांधली करे खसियूं आयूं राणा सनावला जो बयान धांधली जो सबब बनो पाकिस्तान में कदें भी चूंडू मरलेवार नाहन थियूं टर्न आउट में बुधाए रहो आहे ते चूंडन में धांधली थी आहे ही पोस्ट डिवीजन में चूंड मरलेवार कराण चाहन था

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ दिन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
2: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
1: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
2: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम।
1: इस्तेमाल किए कजे
2: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
1: वाह, पोए अजी वठींदस
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम। अडु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हाँ, कोई भी तावट बहानो कोने को तबाबा से साबुन अणदायो सा फेस वॉश अणदायो हाँ तावट बई चीज हुआ है।

हाँ, सो व्हाइट एज का फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा और क्रीमी सा फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा महसूस होगा कि भाई हाँ वाकई अच्छा चीज जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप बिल्कुल जी व्हाइट एज का ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है वो डिटो कॉपी है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की। जैसे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है बिल्कुल वैसे ही व्हाइट एज ब्यूटी सोप को भी तैयार किया गया है। तो जरूर से ये तमाम प्रोडक्ट्स आप ट्राई करके देखिएगा, चाहे वो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो या फिर व्हाइट एज फेस वॉश हो या फिर व्हाइट एज का ब्यूटी सोप हो।

सो ये तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा। नंबर जरा नोट कीजिए, साईं गानो भी ॾाढो हलियो पंहिंजे दौर में। कोई शादी खाली न हूंदी न गाने खां बिना। ओके जी, सो नंबर आहे 033-2738-4309 033-2738-4309 ऐं ॿियो वरी नंबर आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 केॾो ॾिसो प्यार सां ॿुधायां थी। तव्हांखे छा करिणो आहे, तव्हांखे डायल करिणो आहे।

बिल्कुल जी, चाचा पूछ रहे हैं कि एवोकाडो कौन सी क्रीम में या फेस वॉश में मौजूद है। एवोकाडो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो नाइट क्रीम है, जेका तुम राजी टाइम लगाए सको था। बाकी फेस वॉश में वाइटामिन सी आहे। साबुण में भी एवोकाडो अथव, व्हाइटिश जे साबुण में।

0: असांखे न माण्हू माराइणा आहिनि, ऐं असांखे न माण्हू माराइणा आहिनि।
1: ओके जी, असांखे न माण्हू माराइणा आहिनि पर असांखे माण्हू सोना ज़रूरु करणा आहिनि। सो बिल्कुल तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे सघो था। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है सलाम भाऊ जी, हाउ आर यू? आज हम भी ज्वाइन कर चुके हैं आपका शो, क्या अच्छा किया ना, एंजॉय करते हैं जी वाइट एज ब्यूटी शो। बिल्कुल जी भाऊ, आपने बहुत अच्छा किया, आप हमारे साथ ही हमारे प्यारे भाऊ जयपाल भाऊ, और कहते हैं पोइट्री अर्ज है। भाऊ हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, हैरान ना हुआ कर यूं मेरे याद करने पर, ताल्लुक जिनसे दिल का हो वो हर पल याद आते हैं। जयपाल भाई क्या बातें, क्या बातें, सफा तमा कमाल करी छो। अच्छा, ये हमारे साथी ठरी मीरवाज से महबूब अली शेर, रिजवान अली और इमरान अली शेर। भाऊन जो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम में तुम्हारे चौथा भली करी आए। और हैं जी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम फुलजी स्टेशन लग नूरपुर खां, फौजी पठान खान खोसो,

इंसान को सुबह तव्हां सलाम ॾिना आहिनि डॉक्टर हसीना सुमरो खे ओके जी ओके उन खां अलावा अलाह रखियो मेमण हमारे साथ ऐं सैफुल्ला मेमण निज़ाम अली मेमण और हज़ार खान फ्राम लाड़काना असलाम अलैकुम जी वालेकुम असलाम सिदरा मुस्कान जी आपका शो माशाल्लाह गुड है

ओके कहते हैं अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ना हमेशा सलामत रखे, आमीन। मुरीद अब्बास का सॉन्ग लगाइएगा याद यकूत हो कयान से, डेडिकेट आपकी टीम और सब सुनने वालों को, थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है। बिल्कुल जी, तुम इस्तेमाल करे सगो था वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हें खबर है तो हर तरह जो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए मौजूद है। तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आ है, वाइट एज ब्यूटी सोप आ है, वाइट एज फेस वॉश आ है, तुम्हें इस्तेमाल करे तुम्हारी खूबसूरती की मिले एक नो एहसास, एक नई खूबसूरती, एंड तुम भी जो वाह सही वाह, हाँ असा जी हिस्सा वाला प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छी गया है। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, ओके वेरी नाइस। ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी मैडम आरजे सिद्रा मुस्कान फुलजी स्टेशन लग थोड़ो यो समझ में ना आयो तवां जो सजो यो जेको तां जो गोठा सिटी आ। आप हमारे साथ है जी डॉक्टर हसीना, डॉक्टर हसीना साहिब आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा हैप्पी कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी मेरी प्यारी, मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में, आपको वेलकम कहते हैं। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत, हैप्पी आपका निकनेम है लेकिन आपका नाम बहुत खूबसूरत। और सजाद अली जुमाली कहती नवाबशाह से सॉन्ग प्ले करें, ओके मैं कोशिश किया थी। वैसे हाने तकरीबन सबनी जा गाना लिस्ट में अच्छी चुका है, जो हाने जो गाने जी फरमाइश कर दो ना थोड़ो तुम स्टॉप लगाए जो।

सदको अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। अली अकबर बरोही भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई जेकब आबासी में सुन रहे हैं वेलकम इन खुशामदीद। अच्छा ये हमारे साथ हैं मिसेस गुलाम मोहम्मद मरी मीरपुर खास से, यानी कि आप रुखसार मरी की वालिदा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ। अली अकबर बरोही भाई आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। अच्छा ये हमारे साथ ही साद साद साद वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, कैसी है? मैं ठीक हूँ कहते हैं। अदी ताजो प्रोग्राम तो वीआईपी आ है, अदा ताजो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम तो आंके पसंद अच्छे पयो।

सही था जो हिकड़ो अगे ही नखरेली आए वरी मथा तू अन्या लाड कर करे करे मड़े ये निदड़ी दे भी प्यार इंदो आ अच्छा दर्दी तिल के लिए चंदा टॉपिक अम्मी निदुड़ी बोलती है और अलीजा पतलू बोलती है क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ और सबसे प्यारा निकनेम मुझे स्वीटी लगता है जो तुम समझ गई हो। यस मैं समझ गई, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी स्वीटी।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network, सिंध की आवाज।

0: तू मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो बताया करें ताकि हमें भी एहसास हो कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं वो वाकई प्यारे होना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ खूबसूरती हासिल करना जो होता है ना, वो बहुत एक आजकल के दौर में एक नॉर्मल सा काम हो चुका है। वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में से सही प्रोडक्ट जो है ना वो चूज करना एक बहुत मुश्किल सा काम लगता है मुझे। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जो है स्टोर पर ये तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद होना चाहिए और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल करें, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, व्हाइट एश ब्यूटी सोप एंड व्हाइट एश फेस वॉश के बारे में बताया, तो बिल्कुल अभी बारी आ चुकी है कि आप लोगों को व्हाइट एश लवली क्रीम एंड व्हाइट एश डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में

ओके जी, भले याद करे ना पर दुआओं करण वारा जेके ये वरी माण्हू हूंदा आहिनि उहे ॾाढा भला माण्हू हूंदा आहिनि। सो तव्हां बि अगरि कोई माण्हू तव्हांजे ज़िंदगी में अहिड़ो आहे जेको भले तव्हांखे यादि न करे, तव्हांजे ज़िंदगी में आउट थी वियो हुजे, पर दुआनि जे सिलसिले खे कॾहिं बि बंदि न कंदा कयो। वैसे चवंदा न दुआऊं घुरी न आहिनि वठबियूं, जिन जे माण्हुनि जे लाइ दिलि मां दुआऊं पाण निकिरंदियूं आहिनि उहे माण्हू ॾाढा अनमोल हूंदा आहिनि। सो बिल्कुल तुंहिंजो साथ हुजे सुहिणा।

थी, सो कहते ना कि गाना चला दे लेकिन सुनने नहीं देती है। तो बिल्कुल जी, गाने सुनिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम और व्हाइटिश लवली क्रीम और डॉक्टर पिंपल ट्यूब के बारे में भी बताते हैं, और उसके अलावा आप लोगों के फीडबैक्स भी हैं, तो वो भी जरा आप लोगों को, ऐसा ना हो कि भाई हमारे फीडबैक्स तो आप पढ़ती नहीं है, तो आप लोगों के फीडबैक्स की जानिब भी आया जाएगा। ओके जी, सो यहाँ पर व्हाइटिश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाइटिश लवली क्रीम जो है ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिंस का फार्मूला है, जिसके अंदर जनाब 30 वाइटामिंस के कैप्सूल सेट किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि भाई आप ये सोचे कि भाई सिर्फ हमारी स्किन की हिफाजत ही होगी, या फिर ऐसा वाला सीन बन जाएगा कि हमें सिर्फ गोरापन मिल जाएगा, या फिर व्हाइटिश लवली क्रीम की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि व्हाइटिश लवली क्रीम को सिर्फ इस तरह नहीं तैयार किया गया कि भी आप लोगों को गोरा निखार मिले, आप लोगों के चेहरे पर निखार आए, बल्कि ऐसा भी सीन है कि आप लोगों के चेहरे पर जो ये सूरज के खतरनाक असरात आते हैं ना, तो उनसे भी आप लोगों को बचाया जाए। तो आप लोगों के लिए व्हाइटिश लवली क्रीम है, जिसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक, और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और व्हाइटिश लवली क्रीम के साथ साथ जो है ऐसा वाला सीन बनाइए कि इसे आप अपने डेली बेसिस के लाइफ के अंदर ना यूज कर लीजिए, चाहे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई जॉब करते हैं, या फिर आपने किसी शादी फंक्शन में जाना है, तो गर्मियों का मौसम जब भी होता है तो आप लोगों के पास जो है ना मेकअप करने का थोड़ा एक ऑप्शन ही होता है कि भाई हमने मेकअप नहीं लगाना। वैसे भी गर्मियों के सीजन में जब मेकअप लगाते तो आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनको मेकअप या तो लगाना नहीं आता, या तो फिर पता नहीं होता कि भाई गर्मियों में मेकअप किस तरह लगाया जाता है, और उस सूरत हाल में ऐसा सीन बन जाता है कि आप अपनी पूरी शादी जो है वो खराब ही कराती है, आपकी स्किन इतनी खराब हो जाती है, पैची हो जाती है, आपका मेकअप नजर आता है इतना ज्यादा बुरे तरीके से। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लगाने साथ ही आप लोगों के चेहरे पर जज्ब हो जाती है, और आप लोगों के चेहरे पर एक नया सा निखार आना स्टार्ट हो जाता है, आपके चेहरे पर शिमरी इफेक्ट आ जाता है, और आप लोग महसूस करते हैं कि भाई वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर चुके हैं। और व्हाइट एज लवली क्रीम जिसे आप घर में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, हजरात, खवातीन, हर कोई लगाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। बिल्कुल जी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके चेहरे के एक्नीज के खात्मे के मुताबिक तैयार किया गया है। अगर आप एक्नी को खत्म करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, और उसी के अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर एक्नी नहीं लेकिन एक्नी के निशानात काफी ज्यादा है, तो उसके लिए भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब यूज किया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपके चेहरे के एक्नीज को खत्म करेगा बल्कि आपके चेहरे पर जो ये निशानात होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, या फिर आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान हो, कोई जलने का निशान, इतने सारे निशानात अगर आपके चेहरे पर मौजूद है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आपने डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपको मिल जाएगी बेदाग, क्लियर और खूबसूरती वाली स्किन, तो इस्तेमाल कीजिए। वैसे व्हाइटिश लवली क्रीम को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप दिन में जितनी मर्तबा लगाएं आप लगा सकते हैं, फेयरनेस क्रीम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप सुबह लगाएं, दोपहर, रात को, जब आपका दिल करिए आप लगाइए। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है इसे आप लगाएंगे दो मर्तबा, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और आप रात को भी लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले ये बात याद रखा करें कि आप अपना फेस वॉश लाजमी किया करें, फेस वॉश क्यों ना बहुत जरूरी होता है, तो फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएं तो वो लगाइए, अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं, और इसके अलावा जो है ना डॉक्टर पिंपल ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप जहां जहां पर एक्नी हो, जहां निशान हो, जहां कट हो, वहां वहां पर लगाइएगा, पूरे फेस पर नहीं लगाना, ठीक है।

बहुत ही प्यारा गाना किसी ने फरमाइश कर दिया था तो हमने सेट कर दिया था लिस्ट के अंदर। और स्मार्टो गोपां कहते हैं कि तुम्हें खोने का दुख तो बहुत है मुझे, मगर उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। मैं आज भी तुम्हारी यादों में जिंदा और शायद मुझे याद भी नहीं करती तुम। ओके, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पर चाचा खालिद हमें सुन रहे थे, आई एम वेरी सैड बट वाई। और उनके अलावा आदिल कहते हैं टॉपिक आंसर मेरा निकनेम है। अच्छा, नाइस नाइस। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं हाँ जाई मुझे निकनेम बो भी अथई केड़ो केड़ो जल्दी बताए वारो के। अच्छा ये हैप्पी कहते हैं आरजे घर में मुझे पूरी, अच्छा परी कहते हैं, परी सही सही मेरे को लगा पूरी क्यों बोलेंगे। और कहते हैं आप मुझे हैप्पी गर्ल भी कहते हैं, मैं बहुत चले जबरदस्त, आपको दोनों नाम ही बहुत अच्छे लगते हैं, चले इंजॉय करें। और उसके अलावा सादिया हमारे साथ मौजूद है, सादिया आपको वेलकम कहते हैं। आशिक खास के लिए मैं सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, और कहते प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह वेरी नाइस योर प्रोग्राम, थैंक यू जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और गाने हमारे पास है जी यहाँ पर दो, टाइम देखा जाए तो चार नहीं बल्कि छह मिनट बजे हैं, तो चले हम तीन तीन मिनट जो है ना ये दोनों गाने सुन लेंगे। ये वाला गाना हमारे पास मौजूद है तो जरा हम इसे भी सुनेंगे, और थोड़ा आगे करना पड़ेगा।

अच्छा लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सुरुज रानी में भी अच्छी वयस तमाम जी बेहतरीन शो में, थैंक यू सो मच लुबी, आपको वेलकम कहा जाता है। अच्छा ये हमारे साथ जो पैनल पर हैप्पी गर्ल होती है वो कहती है मेरा फनी निकनेम है किट्टू, मुझे किट्टू बुलाते हैं, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और फौजी पठान खान कोसो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इतने सारे अपने मैसेजेस कर दिए हैं। और हमारे साथ जयपाल भाई कहते हैं भाऊ जवाब लास्ट में, अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, खुशी इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी फिर, हाँ हम बाकी मरीज बनेंगे हम खुशी से इलाज करवाएंगे, ठीक है, खुशी को पारित कीजिएगा हमारी। और मकसूद मल्हा भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे पर खास अब्दुल्ला महर भाई आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। अच्छा ये बदीन खान, डॉक्टर शौकत अली है सिद्रातान जो प्रोग्राम सो थैंक यू।

भी जयपाल भाई कहते हैं कि खुदा कबूल ना करे वो दुआ जिसमें मांगा हो किसी और ने किसे। अच्छा कहते हैं वेदर अपडेट कीजिए हमारे लाड़काना सिटी की। वेदर भाई ऐसा है कि गर्मी है, समझ नहीं आ रहा कि बारिशें पूरे मुल्क में हो गई, बस लाड़काना में ही बारिश नहीं हुई, तो ऐसा वाला सीन है कि बहुत गर्मी है। उनके अलावा कहते हैं आप भाव हमारी भी दुआ है आप हमेशा खुश आबाद और हर वक्त हैप्पी रहें। डियर भाव जी थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाई जान। इरम कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारे दिलबर दोस्त जवाब है। अच्छा तो क्या अब भी आप मोटी हैं? लुबना लाइफ में ॾाढो ॾुखा चए थी मेरा तो कोई निकनेम ही नहीं है। ऐं आहे जो तव्हांजो निकनेम लुबड़ी। ये तो मत भूले। बहुत ही खूबसूरत सा कलाम हमने यहाँ पर सुना और उसी के साथ साथ ये वाला लास्ट में रहता था। बिल्कुल ही प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा नजीर खोसो भाई में सुन रहे बलोचिस्तान से थैंक यू। फरजाना जमील हमारे साथ है वालेकुम अस्सलाम फरजाना। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते हैं हाणे जेको फरमाइश कंदो उन जो गानो सुभाणे जुमे ते हलायो वेंदो। बिल्कुल सुभाणे जुमो चङो यादि ॾियारायो।

अरे किशोर भाई लास्ट में तो बाबा तमा एडा कमेंट करी सडा सफा इमोशनल करी सलो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं आप कभी कभी खुश रहे हमेशा ठीक है और हमारे साथ रहे ओके जी स्मार्टो गोपांग आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं बिल्कुल सही आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए ताकि आप खूबसूरत हो जाए और खूबसूरत तो आप हैं बस आपकी खूबसूरती को थोड़ा टचअप की जरूरत है तो वो मिल जाएगी जब आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे अच्छा लाली लिस्टर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ और जी बिल्कुल मिल गया था

फिर मिलते हैं आप लोगों से 5 बजे वाले प्रोग्राम में, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और 5 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा. और इसी के साथ साथ कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाहिश, जिनके फीडबैक दे चुके, जिनके गाने दे चुके, सभी से माजरत करते हैं. सो मोकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: कराची में मीडिया से गालाइंदे वरी वजीर मुराद अली शाह चयो है सिंध असेंबली केतरा ही भेरा सूबे में नए सूबे की सौ सैकड़ों मुखालफत कर चुकी है सिस्टम के नाकाम चवंदड़ एक भेरो थर घुमी दिसन थर जो मॉडल समूरे मुल्क में इस्तेमाल थियण घुर्जे थर में 175 अरब कोयले जा जखीरा मौजूद है मैदनी वसीलन से मालामाल आयू घणी सलाहतू अजा इस्तेमाल नाहन थियं मैदनी वसीलन जो इस्तेमाल जो सलाहतू पैदा करणी पवंद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टिन ॾींहनि जे दौरे ते अॼु सऊदी अरब वेंदो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत ख़िते में जारी छिकताण ते ॻाल्हियूं थींदियूं पर ॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा बि चयो आहे त वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु नायब वज़ीर-ए-आज़म एसाक डार ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि गॾु हूंदो सऊदी क़यादत सां मुलाक़ातनि दौरान पाक सऊदी लाॻापन ऐं ख़िते जी सूरतहाल समेत सिफ़ारती कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो नायब वज़ीर-ए-आज़म एसाक डार उहिदनि खां सऊदी अरब पहुतल ईरान ऐं ओमान आबराए हरबुज में बहरी जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो ईरानी परॾेही वज़ारत तस्दीक करे छॾी तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआदे जो गॾियल बदननामो तयारु करे रहिया आहियूं टीं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्टों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: ये

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे
3: इस्तेमाल थियण घुर्जे थर में 175 अरब टन कोयले जा ज़खीरा मौजूद आहिनि. मादनी वसीलनि सां मालामाल आहियूं. घणियूं सलाहियतूं अञा इस्तेमाल न थियूं आहिनि. मादनी वसीलनि जो इस्तेमाल जूं सलाहियतूं पैदा करणियूं पवंदियूं. ईरान ऐं उमान अबनाए हुर्मुज़ में पहिरीं जहाज़नि जे हिकु रस्ते ते इतफ़ाक़ करे वरितो. ईरानी परॾेही वज़ारत तस्दीक करे छॾी. तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका माहिदे जो गॾियल बदनामो तयारु करे रहिया आहियूं, जीअं धुर जी मुदाख़लत ते मामिलो ख़राब बि थी सघे थो. ईरान ख़िलाफ़ जंग लाइ हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई ते अमरीकी सदर ट्रंप दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ खे नाराज़. अमरीकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास दौरान पेट हेगसेथ ते हथियारनि जे ज़ख़ीरे में घटिताई ते कावड़ जो इज़हार कयो. सदर ट्रंप ख़बरुनि जी तरदीद कंदे चयो आहे त अमरीका वटि हथियारनि जो वॾो ज़ख़ीरो मौजूदु आहे. कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़ींदड़नि खे जेल वञिणो पइजी सघे थो. दुश्मन 48 कलाकनि दौरान ईरान में हुकूमत तब्दील करण जी साज़िश कई पर नाकाम रहियो. जंग ऐं पाबंदियूं बि ईरान खे शाम वांगुरु झुकाए न सघियूं. ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त ईरानी अवाम जे हौसले ऐं अज़म दुश्मन खे नाकाम बणायो. नए सुप्रीम लीडर बि ईरान खे मुतहद ऐं मज़बूत बणायो आहे. अमरीका जी पहिरीं तरजीह ईरान खे एटमी हथियारनि खां रोकणु आहे. तेहरान सां तकरार जे ख़ात्मे लाइ वाशिंगटन फ़ौजी वाशी ऐं सिफारतकारी समेत सभु रस्ता अख़्तियार कंदो. अमरीकी नायब सदर जे टी वेंस चयो आहे त ईरान में हिकु धुर जंग जो ख़ात्मो ऐं ॿी जंग जारी रखणु चाहे थी. तकरार जो को न को हल निकिरी ईंदो.

0: पाकिस्तान खिते में अमन के क्याम लाए दोस्त मुल्क से गर्जी कम जारी रख आप मुस्ते अग पढ़ाई से ईरान अमेरिका गालियन जो रस्त हमवार पर डेई तर्जुमान तायरुस इंद्राबी है बाबुल मुंतब में पहरी जहाजन से हमलों की मुसम्मत क्यों था पाकिस्तान पहरी रस्तन के तहफुज ए सलामती की हिमायत जारी रख गजा में अमन फौज बाबत का तजवीज आई तो पाकिस्तान जायजो वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दन की महफूज थाकन ए सहूलतकारी जो खात्मो जरूरी है। ओमान वेझो अपना हुर्मुस में बिन आयल टैंकर्स में धमाका बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी मूजिब पहरी बेड़न में धमाका ओमान वेझो थे तफसील नाइन मिलिया यमन में हुसैन पारा सऊदी पहरी बेड़न से हमलन बाद बाबुल मुंतब में भी पहरी ट्रैफिक घटी वही कुछ ही जहाजन बाबुल मुंतब में सफर कर पीपल्स पार्टी जो आजाद कश्मीर में मीरपुर बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी नून लीग से धांधली कर सीटों खसन जो इल्जाम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से भी सवाल उथारे छा नैयर बुखारी है तो मीरपुर डिवीजन में चार सीटों पीपल्स पार्टी का धांधली कर खसी वही नाना सनौला जो बयान धांधली जो सबब बनो पाकिस्तान में कदें भी चूंडू मरहले वार नाइन थी टर्न आउट भी बुधा रो है चूंडन में धांधली थी है ये पूंछ डिवीजन में भी चूंड मरहले वार कराने चाहन था। आजी सिंध जावेद आला मोटो की कराची की सिटी कोर्ट से आमद कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच बेन से मुलाकात कई आईजी सिंध तो बार बेंच ए वकीलन के गर्जी कम करण है गलत फहमियन के कंट्रोल करने की कोशिश थे घुर्जे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से गर्जी कम करण है आमिर वड़ाइच आईजी जावेद आलम ओटो के अचान से शिकायतू खत्म क्यों हाँ न एफआईआर घुर्जे एक्शन कम थे या न वकील के थाने में इज्जत मिलन घुर्जे कराची की अदालत व्यापारी मीर रजा अली की कबर कुशाई बाबत अफवाह मंजूर कर वरती सेक्रेटरी सेहत के मीर रजा की कबर कुशाई लाए वोट जोड़ की हिदायत मकतूल व्यापारी के पी मीर हसन पुट से कर्ज हो तो सजो मुल्क कर्जी है परेशान आयो पुलिस कतल के मजन लाए भी तैयार ना है बयान भी नी वे व्यापारी मीर रजा जो केस हल कर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वी आईजी सिंध जावेद आला मोटो है पुलिस मीर रजा केस के ट्रेस कर पुलिस इन केस से घनी मेहनत कई है केस बाबत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वी कानपुर वेझो बयना पुलिस मुकाबलो टे डुहारी मारजी व्या एक पुलिस अहलकार जख्मी नापरकोट थाने की हद में पुलिस मुकाबले दौरान मारजी व्यल टिन्ही डुहारियन जा लाश अस्पताल मुंतकिल डीएसपी कानपुर राणा नसुल्ला जो चवण है मारजी व्यल टिन्ही डुहारियन की सुणप बायोमेट्रिक जरिए कई वी कंबट में टे ढीं अग गुम थे जरात खाते के रिटायर्ड ऑफिसर जो घर के कमरे में लाश हथ पुलिस पहुंची कोटाए कर जायद भट्टी जो घर के कमरे में लाश हथ कर लाश पोस्टमार्टम लाए अस्पताल मुंतकिल शक की बुनियाद से मकतूल की जाल समेत ब औरतू गिरफ्तार पुलिस जो चवण है इतला मिलो तो कमरे में बदबू अची रही है कोटाई कई तो लाश मिलो मकतूल की जाल लतीफा शेख समेत बिन औरतन की गिरफ्तार किया है जांच जारी है। चक वेझो पुरानी तकरार ता बिन धुरियन में जेड़ो एक जनो कतल कोट शाहू थाने जी हद में शीह ए उमर शहकानी जतोई जी धुरियन में जेड़ो थियो धुरियन जे एक बे मथा फायरिंग मोहम्मद मुसा पुट इसाक जतोई मारजी वियो मारजी वियल जो लाश कानपुर अस्पताल मुंतकिल धुरियन में फायरिंग जो सिलसिलो जारी नवाबशाह में डोहारियन से मुकाबले दौरान शहीद थियल पुलिस अहलकार की जनाजे नमाज बाद तकफीन शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हसन खोसो की जनाजे नमाज में डीआईजी एसएसपी ए बया ऑफिसर शरीक थे जनाजे नमाज का पोई शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हसन खोसो के मर्द सरकारी एजाज गोठ में मिट्टी में हवाले किया मिरिया रोड में वीह ॾींहं अॻु पुरसवार नमूने गुम थियल नेगरी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। रेती मोहला मां गुम थियल यारहं वरियन जी आसमा मलिक जे वारिसनि एहतजाजी रैली कढी धरणो हयो। नेगरी जे वारिद अकरम मलिक जो चवणु आहे त धीउ एकवीह ॾींहं खां गुम आहे। पुलिस दिलासा ॾेई रही आहे नेगरी जी बाज़ियाबी लाइ संजीदा नाहे।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अनिया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, आसाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में ॿ खां टे भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अली वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी।
4: It's 5:15 PM.
5: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88
3: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

कराची जी अदालत नौजवान वापारी मीर रज़ा अली जी कबर कुशाई जो हुक्म ॾेई छॾियो। अदालती हुक्म ते बीहर पोस्टमार्टम लाइ मेडिकल बोर्ड बि क़ाइमु। मीर रज़ा अली जे पीउ मीर हसन जो चवणु आहे त संदसि पुट खे बेदर्दीअ सां क़तलु कयो वियो। पुलिस क़तल खे मञण लाइ बि तयारु नाहे। ख़बर नाहे त छा लिखणु चाहे थी। आई जी सिंध जावेद आलम ओढो दावा कंदे चयो आहे त पुलिस मीर रज़ा अली केस हल करे छॾियो आहे। जल्द पुलिस अमलदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हक़ीक़तूं साम्हूं रखंदा। कंडियारो में क़ौमी शाहराह ते कोच जो मोटरसाइकिल खे टकर, टे ॼणा फोत। हादसे में मोटरसाइकिल सवार रुस्तम मंगरियो, झाड़ू ऐं नसीम मंगरियो थॾे ते दम ॾेई छॾियो। कानपुर वेझो मुबैना पुलिस मुक़ाबले में टे ॾोहारी मारिजी विया, हिकु पुलिस अहलकार बि ज़ख़्मी। नापरकोट थाणे जी हद में पुलिस मुक़ाबले दौरान मारिजी वियल टिनी ॾोहारियुनि जा लाश अस्पताल मुंतकिल। डीएसपी कानपुर राणा नसरुल्ला जो चवणु आहे त मारिजी वियल टिनी ॾोहारियुनि जी सुञाणप बायोमेट्रिक ज़रिए कई वेंदी। जेकबाद में बरसाती पाणी जे निकाल लाइ तामीर थींदड़ सिम नाले ते बलोचिस्तान खे एतिराज़। बलोचिस्तान सरकार पारां सिंध बलोचिस्तान दंग ते सिम नाले जो हलंदड़ कम बंदि करण खां पोइ डीसी जेकबाद, डीसी जाफ़राबाद ऐं डीसी सोबतपुर जी गॾिजाणी। ज़रियनि मूजिबि गॾिजाणी में सिम नाले ते इतफ़ाक़ न थी सघियो।

0: गंबट में टे ॾींहं अॻु ज़रात खाते जे गुम थियल रिटायर्ड ऑफिसर जो घर जे कमरे मां लाश हथ। पुलिस कोटाई करे ज़ाहिद भट्टी जो घर जे कमरे मां लाश हथ कयो। शक जी बुनियाद ते मक़तूल जी ज़ाल समेत ॿ औरतूं गिरफ़्तार। पुलिस जो चवणु आहे त इतलाउ मिलियो त कमरे मां बदबू अची रही आहे। कोटाई कई त लाश मिलियो। मक़तूल जी ज़ाल लतीफ़ा शेख समेत ॿिनि औरतनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। वधीक जांच जारी आहे। नवाबशाह में ॾोहारियुनि सां मुक़ाबले दौरान शहीद थियल पुलिस अहलकार जी जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हसन खोसो जी जनाज़े नमाज़ में DIG, SSP ऐं ॿिया ऑफिसर शरीक थिया। जनाज़े नमाज़ खां पोइ शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हसन खोसो जी मड़ सरकारी एज़ाज़ सां ॻोठ में मिटी मां हवाले कयो। सक्कर में जमात इस्लामी लेडीज़ विंग जी पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। मुज़ाहिरनि चयो त पेट्रोलियम लेवी ऐं इज़ाफ़ी टैक्स सबबि महांगाई में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं घटि आमदनी वारनि माण्हुनि जूं मुश्किलातूं वधी वयूं आहिनि। पेट्रोल ते लेवी ख़तमु कई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरण जो आवाज़
3: GAFM 90.8।
4: यार कुझु ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
5: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
4: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
4: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
5: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
4: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़, अञा साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कानून लागू कंदड़ इदारा दहशतगर्दी के खात्मे लाए पूरा समाहिन दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे ताई कार्रवाई जारी रखी वेंदी. मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सोमालिया के बचाव वाले वजीर की क्यादत में आला सतही वफद की मुलाकात. GHQ रावलपिंडी में मुलाकात दौरान गरियल दिलचस्पी के मामलन इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल बितरफी दिफाई ए सिक्योरिटी सहकार के वधिक हथी देने के मामलन ते खालन की रेवट. ISPR मूजिब धुरियन गडियल सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह देने लाए अस्करी राबता वधिक मजबूत बनने की अहमियत ते जोर भरियो. सोमालिया के बचाव वाले वजीर अमन इस्तेकाम के हथी देने लाए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत ए हथियारबंद फौज के पेशेवराने किरदार के सहारा. फील्ड मार्शल खत्े में जटादार अमन के क्याम लाए हर मुमकिन सहकार जो अजम मरजाय. वजीर आजम शहबाज शरीफ टिन डीह के दौरे से सऊदी अरब पहुंची वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ए बन सा मुलाकातू कद बितरफन लागापन समेत खत्े में जारी चिकटाण से गालू थन्दू. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ख्वाजा आसिफ फतौल्ला तारण ए तारिक फातमी भी वजीर आजम से गड पौता. नायब वजीर आजम इसाक डार अगे सऊदी पौतल.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: आप सुन रहे हैं GAFM.
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार.
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
6: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

यद्ल सतार भयो चवे। शामराद मिदरी खा फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खा फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

0: की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 8:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।

0: are you free? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
1: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
0: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। Can you please take me there?
1: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
0: हूँ। You are the sweetest person I know.
1: See you.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ DFM88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।